हमने समूद की तरफ उनके भाई स्वालेह को भेजा कि अल्लाह की इबादत करो, तो वो दो फरीक होकर आपस में झगड़ने लगे। स्वालेह ने कहा कि ऐ कौम, तुम भलाई से पहले बुराई के लिए क्यों जल्दी करते हो और अल्लाह से बख्शिश क्यों नहीं मांगते ताकि तुम पर रहम किया जाए। वो कहने लगे कि तुम और तुम्हारे साथी हमारे लिए बुरा शगुन है। स्वालेह ने कहा कि तुम्हारी बदशगुनी अल्लाह के पास है, बल्कि तुम ऐसे लोग हो जिनकी आजमाइश की जाती है। और शहर में 9 शख्स थे जो मुल्क में फसाद किया करते थे और इस्लाह से काम नहीं लेते थे। कहने लगे कि अल्लाह की कसम खाओ कि हम रात को इस पर और इसके घर वालों पर शबखून मारेंगे, फिर इसके वारिसों से कह देंगे कि हम तो इसके घर वालों के मौके हलाकत पर थे ही नहीं और हम सच कहती हैं।

بصيرون.

और जब मूसा जवानी को पहुंचे और भरपूर जवान हो गए तो हमने उनको हिकमत और इल्म इनायत किया और हम नेकुकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। और वो ऐसे वक्त शहर में दाखिल हुए कि वहां के बाशिंदे बेखबर हो रहे थे तो देखा कि वहां दो शख्स लड़ रहे थे, एक तो मूसा की कौम का है और दूसरा उनके दुश्मनों में से। तो जो शख्स उनकी कौम में से था उसने दूसरे शख्स के मुकाबले में जो मूसा के दुश्मनों में से था मदद तलब की, तो मूसा ने उसको मुक्का मारा और उसका काम तमाम कर दिया। कहने लगे कि यह तो शैतानी काम हुआ, बेशक वो इंसान का दुश्मन है, खुला बहकाने वाला है। बोले कि ऐ परवरदिगार, मैंने अपने आप पर जुल्म किया सो तू मुझे बख्श दे। तो अल्लाह ने उनको बख्श दिया, बेशक वो बख्शने वाला है, मेहरबान है।

अमरीकी फौज आ एक भेरो बीहर ईरान ते हमला सिरक में शादी तकरीब ते बमबारी में चार मानू शहीद पंटी जख्मी आवाज चाबार कश्मीर में बंदर अब्बास में धमाका जैरफत एयरपोर्ट ते हमलो गैस से आम मरकज असलोया में धमाका ईरान के बिन ऑयल टैंकर से हमला अमरीकी सदर ट्रंप चो आए ते ईरान के घना मौका डिना तेहरान जवाबी कार्रवाई कई ते हमला वधिक तेज कंदासी ईरान जा जवाबी हमला वे अग में अमेरिकी फौजी मारजन की दावा पासदान इनकलाब दावा कई है उर्दुन में अमेरिकी अडे के बैलिस्टिक मिजाइल से निशानो बनाया हो उर्दुन दावा कई है ईरान के 13 मिजाइल के हवा में ही तबाह किया हो 3 मिजाइल आबादी का परे वही किरिया अमेरिकी अख्तियार चवण है ईरानी हमलों में को भी जानी नुकसान न थो तहरीन के भी ईरानी हमला नाकाम बनाने की दावा वफाकी घरू वजीर मोहसिन नकवी के लंडन में सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात जरियन चवण है मुलाकात 1 कलाक तीन जारी रही मोहसिन नकवी सदर आसिफ अली जरदारी के आम पैगाम पहुंचाया सदर आसिफ अली जरदारी नवन सूबन के बेस समेत मुख्तलिफ कौमी मामलों से मौकफ से कायम रहने का पैगाम डींदे तो कौमी मफाद में सभी में गजी हलण पवन पानी लाइफ लाइन आए पानी के हथियार तौर इस्तेमाल करण की इजाज़त न दींदी पानी के सियासी मकसद लाए हथियार तौर इस्तेमाल किया वो तो भरपूर जवाब दिनों वो शंघाई सहकारी कॉन्फ्रेंस के सरबराह इजलास के खिताब कदे वजीर आजम शहबाज शरीफ है आलमी मुआदन से रूह मौजिब अमल थे घुर्जे मका दिफाई मुआदो भी कहे खिलाफ ना है इस्लामाबाद मुफामती यादाश्त नामो भी खिते में अमन के बहाली लाइ आम है दहशतगर्दी भी खिते के संगीन खतरन में एक है पाकिस्तान इलाके में चटादार अमन के क्याम लाइ परजुम है दखण एशिया मुकमिल अमन का सिवाय तरक्की वो हदफ हासिल न तो कर सके पीपी चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी है पानी के लखन मानून खिलाफ हथियार तौर इस्तेमाल न तो कर सकते आलमी कानून तो पाकिस्तान के मौकफ की तोसीक कई भारत के अदालती फैसले कानून के पासदारी करण घुर्जे का भी रियासत एक तरफो मुआदो न थी खत्म कर सके

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले। पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले। पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: सिंध के माथे का झूमर
2: DFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

अमरीकी फौज आ एक भेरो बीहर ईरान ते हमला सिरक में शादी तकरीब ते बमबारी में चार मानू शहीद पंटी जख्मी आवाज चाबार कश में बंदर अब्बास में धमाका जैरफत एयरपोर्ट ते हमलो गैस जहां मरकज असलोया में धमाका ईरान के बिन ऑयल टैंकर से हमला अमरीकी सदर ट्रंप चो आए ते ईरान के घना मौका डिना ते ईरान जवाबी कार्रवाई कई ते हमला वधिक तेज कंदासी

0: फुकराई रंग जूं।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

पाक खाक दे वेस दिल का सुना यार सरो पानूर मिया उई वेस चंगेरे।

हे हुसन दामल सब कोई जाने हुसन खास जहूर जात दा है अहमद नाम सदावे विच अरब सुना जाम जात सिफात दा है कुर्सी अर्श ते हूर मलक।

ਬਿਲਲ ਵਰੀਦ ਵਤਨ ਆਵੇਂ ਦਾਸ ਮਾ

वारन में वरथा वेण सहल ऊजे हक भंजन से सचू की सूमरा ओ जय सतिय सत न छडियो उहा मारुई मर जाई अचे उमर कोट में जहनोई न लजाई जा

0: जीअं शल तहिड़ी वञा तन ॾे लालाईअ जो लतीफ़ चए
1: मुस्तकीम इहो पवां

समूह में

میں چاہیے.

ਸੋਨੀਆ ਹਰਿਹਨ ਸਾਜੇ ਰੋ न पुछन बियो भेरो ये कुर्बानी केर थियो ओ पागल कजी तो दिया ओ हियो सारु हथन वनी खा विलायत में अग्यो अजीब ओ तेरी मां न चवल कहिया कुर्बानी केर थियो

کانگل کر خبر سب مڑایا سون میں پکی تو جا پر او بھومی متھوں گھر

ਗਾਲ ਗੋਲੀਆਂ।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आप जडे त वजीर आजम शहबाज शरीफ ए किर्गिस्तान जो सदर पिण इन तकरीब में शरीक हुआ।

पाकिस्तान ऐं किर्गिस्तान में मुआहिदनि ऐं बफ़ामत अदाशत हुसैन जी तकरीब थी, जंहिंमें पाकिस्तान जे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ तकरीब खे ख़िताब कयो।

0: पाकिस्तान ऐं किर्गिस्तान विच में मुख़्तलिफ़ शोबनि में सहकार ऐं मुआहिदनि ते सहियूं। बिश्केक में वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं किर्गिस्तान जे सदर हुसैन वारी तक़रीब में ॿिन्ही मुल्कनि विच में ट्रांज़िट वापारु ऐं ॿिन्ही शोबनि बाबति सहियूं कयूं वयूं।
1: अमेरिकी फ़ौज जा हिकु भेरो ॿीहर ईरान ते हमला। सिर्फ़ में शादी तकरीब ते बमबारी, मजमूई तौर 12 ॼणा शहीद, 35 ज़ख़्मी। अहवाज़ जा बारकश्म बंदर अब्बास में धमाका, जेरिफ एयरपोर्ट ते हमिलो, गैस जे अहम मर्कज़ इस्को में बि धमाका। ईरान जे ॿिनि ऑयल टैंकर्स ते बि हमला। अमेरिकी सदर ट्रंप चयो आहे त ईरान खे घणा मौक़ा ॾिना, तहरान जवाबी कार्रवाई कई त हमला वधीक तेज़ कंदासीं।

0: कई आए त उर्दन में अमरीकी अॾनि खे मिज़ाइलनि सां निशानो बणायो वियो। उर्दन दावा कई आहे त ईरान जे तेहरान मां 10 मिज़ाइलनि खे हवा में ई तबाह कयो वियो आहे, 3 मिज़ाइल आबादीअ खां परे वञी किरिया। जॾहिं त अमरीका अख़्तियारनि जो चवणु आहे त ईरानी हमलनि में को बि जानी नुक़सान न आहे थियो। कुवैत ऐं बहरीन जी बि ईरान ख़िलाफ़ नाकाम हमलनि खे नाकाम बणाइण जी दावा।
1: वफाकी घरो वज़ीर मोहसिन नकवी जी लंडन में सदर आसिफ अली ज़रदारी सां मुलाक़ात। ज़रियुनि जो चवणु आहे त मुलाक़ात हिकु कलाक ताईं जारी रही। मोहसिन नकवी सदर आसिफ ज़रदारीअ खे अहम पैगाम पहुचायो। सदर आसिफ ज़रदारी नवनि सूबनि जे बहस समेत मुख़्तलिफ़ क़ौमी मामलनि ते पंहिंजे मौक़िफ़ ते क़ाइमु रहण जो पैगाम ॾींदे चयो त क़ौमी मुफ़ाद ख़ातिर समूरनि धुरियुनि खे गॾिजी हलणो पवंदो।
0: पाणी लाइफ लाइन आहे, पाणीअ खे हथियार तौरु इस्तेमाल करण जी इजाज़त न ॾींदासीं। पाणीअ खे सियासी मक़सदनि लाइ हथियार तौरु इस्तेमाल कयो वियो त भरपूर जवाब ॾिनो वेंदो। शिंघाई सहकारी कॉन्फ्रेंस जे सरबराह इजलास खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चयो आहे त आलमी मुआहिदनि ते रूह मूजिबि अमल थियणु घुरिजे। मका दिफ़ाई मुआदो बि कंहिं जे ख़िलाफ़ न आहे। इस्लामाबाद मफ़ाद यादाश नामो बि खिते में अमन बहाली लाइ आम आहे। दहशतगर्दी बि खिते खे संगीन ख़तरनि मां हिकु आहे। पाकिस्तान इलाइक़े में जटादार अमन जे क़याम लाइ परअज़म आहे। ॾखिण एशिया मुकमल अमन खां सवाइ तरक़ी वारो हदफ़ हासिलु नथो करे सघे।
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

కోట మే ఓ మనా

जनी जाथरन में वरथा वेण सहल ऊजे हक भंजल से सचू की सूमरा ओ जय सती सतु न छदियो उहा मारुई मर जाई अचे उमर कोट में जहलोई न लजाई जा सागिल सदाई उहा मारन

0: जड़ी आयस जी शलपड़ी वना तन दे लालाई जो लतीफ जे करम गन उठामी मारिय लगुम मेरा सब जमा दरसी खेस कायारी का धजी हुतम अचे ती कंदु खण दस की अग्यों मने मारू अड़न जे
1: Allah

ਲੰਗਿਓ ਜਨ ਲਾਹੂਤ ਤਨ ਪਖਾ ਪਾਵਰ ਵਧਿਆ ਜ਼ੁਕਰ ਪਿਸੂ ਮਲਾ ਸਭ ਸੇਰ ਰਹਿ ਬਦ ਮੇ

पता करते हैं लोगों के दिलों को, चाहते पता करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं लगते। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। यू आर ट्यून्ड इन टू जीए वीडियो FM ETHR। साथ ही साथ प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम से दिल, स्वीट सी हंसी, परफेक्ट पर्सनैलिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं आज रुखसार सिंध की आवाज। हेलो, कैसे हैं आप? आई होप कि जी जहां जहां भी मौजूद है बिल्कुल टिप टॉप से कूल, एक साउंड एकदम स्ट्रॉन्ग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं। जहां जहां भी मौजूद है बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद है और मेरे पूरे पूरे साथ देने के लिए पूरी पूरी तैयार है, पूरे पूरे एक बजे तक आप सुन रहे

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है. मुझे कहते हैं आरजे रुखसार, आपको और मेरा साथ पूरे पूरे एक बजे तक का है. बाद वापस आ चुके हैं. आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं प्रोग्राम में तीन तरीके का से. आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, इसके आर टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, उसको सेंड कीजिए 8881 पे. और कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है, दैट इज www.facebook.com/GFM88 के पेज के ऊपर आने के बाद आपको मिलती है पोस्ट जिंदगी गुलजार है कि उसके नीचे आप कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं. ठीक है, तो कमेंट्स को ड्रॉप कीजिएगा और साथ साथ आप लोग मुझे अब कॉल भी कर सकते हैं. कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488 के ऊपर आप लोगों की लाइव कॉल्स लेंगे और हमारा सेगमेंट होने वाला है डैड इज बोलो तो नहीं सॉरी सर लगाओ गाना सुनाओ. ओके, सुर लगाओ गाना सुनाओ में आप लोगों की कॉल्स को हम रिसीव करने जा रहे हैं. सो हम चेक करेंगे फर्स्ट कॉलर कौन है, कहाँ से. हेलो,
1: वालेकुम सलाम
0: जी. कौन, कहाँ से?
1: हबीबुल्ला
0: भाई, कैसे? ठीक ठाक.
1: ठीक ठाक भाई, तुम ठीक हो?
0: जी मैं ठीक ठाक हूँ. मुझे बताइएगा कि गाना वाना सुनाएंगे?
1: जी जी गाना सुनाऊंगा, समन मिलाल का गाना है.
0: ओके सुना दें.
1: अरे अरे दिल
0: ओके, थैंक यू सो मच. बहुत सारा ख्याल रखिए और अच्छे अच्छे से आप लोग गाने सुनाने हैं. दिल तोड़ने वाले नहीं, जोड़ने वाले गाने सुनाएं प्लीज. नेक्स्ट कॉलर. हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहां से?
2: बाजी वफा अब्दुल वहीद जतोई केटी शामिल हो. बाजी
0: गाना सुना दें जल्दी से.
2: बिल्कुल सुनाएं. देखे बाजी जामिन अली का नगमा है. तेज कुछ तूफाना सब शहर तंग आज तलदे हलों टकुर.
0: सुनाए ना, गा के सुनाए ना.
2: हाँ सुनाए ना बाजी, यही माँ सुनाए था. कुछ दोस्त है बल्कि मेरा भाई है जहीर अहमद जतोई, मेरा भाजा है अहमद जतोई, अंबाबर शेख साहब है, जो भी सुना है वफा अब्दुल वहीद जतोई पर हूँ. सजी सत के सलाम.
0: ओके
2: बड़ी मेहरबानी.
0: ओके अल्लाह हाफिज. गा के तो फिर भी नहीं सुनाया आपने भाई मेरे. अच्छा जो लोग सुर लगाओ गाना सुनाओ में आएंगे इसका मतलब ही यही है, सुर लगाओ गाना सुनाओ. ठीक है, गाना सुनाएंगे तो प्ले होगा, अदरवाइज अगर आप गाना नहीं सुनाएंगे, या अगर आप बॉलीवुड कंटेंट सुनाएंगे, या अगर आप सैड सॉन्ग सुनाएंगे, तब आपका सॉन्ग प्ले नहीं किया जाएगा. ठीक है, ये है रूल हमारे सेगमेंट का. सो नेक्स्ट कॉल. हेलो,
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो. डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते.
4: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज.
5: ढाडो सुठो
4: GFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज.

0: और कॉलर चेक करते हैं कॉलर कहाँ से। हेलो
1: वालेकुम भाजी।
0: वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से?
1: यार गुलाब लिखा रही कोट बचाओ।

0: गाजी खान रिंद।
1: गाजी खान रिंद भाई कैसे? ठीक ठाक,
0: अल्लाह का शुक्र है भाई। आप सुना,
1: गाना सुना दें प्लीज।
0: गाना सुनाता हूँ।
1: ओके।
0: रट्टी दिल ते पत्थर मुंडा जान लिया तुझी शादी में मुके ते होते हो। रट्टी दिल ते पत्थर मुंडा जान लिया तुझी शादी में मुके ते होते हो। दुर्दल पाए चरण में दुर्दल पाए चरण में आज खुशी लाए चलना प्योर।
1: किसका गाना है ये? किस सिंगर का गाना है
0: ये? उसका जो।
1: ओके, और अगर उनकी आवाज में ना मिले तो? चले फिर, थैंक यू सो मच। और कुछ कहेंगे? ओके, अल्लाह हाफिज। जी, और भाई का गाना हम प्ले करने जा रहे हैं और ये मुझे उनकी आवाज में मिल नहीं रहा है, सो मैंने चला दिया है जी किसी और की आवाज में।

ये वही वाला गाना हो। कभी कभार आप लोग इतने मुश्किल गाने लेकर आते हैं कि वो मुझे बड़ी मुश्किल से सर्च करने पड़ते हैं।

0: किर्गिस्तान ऐं किर्गिस्तान विच में मुख़्तलिफ़ शोबनि में साकार ऐं मुआहिदनि ते सयूं। बिश्केक में वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं किर्गिस्तान जे सदर तसैन वारी तक़रीब में शरीक थियो। ॿिन्ही मुल्कनि विच में ट्रांज़िट वापार ऐं ॿियनि शोबनि बाबति सयूं कयूं वयूं। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त पाक किर्गिस्तान लाॻापा वक़्त सां मज़बूत थी रहिया आहिनि।
1: अमेरिकी फ़ौज जा हिकु भेरो ॿीहर ईरान ते हमला। सेठ में शादी तकरीब ते बमबारी, 12 ॼणा शहीद, 70 खां वधीक ज़ख़्मी। ईरानी सूबे फ़ौजिस्तान जे अहवाज़ ऐं आगाहदारी शहरनि ते हमला कया विया। 7 शहरी शहीद थिया। अमेरिकी सिर्क जे हिकु ॻोठ खे बि निशानो बणायो। शादी तकरीब ते हमले जे नतीजे में 5 ॼणा शहीद ऐं 68 खां वधीक ज़ख़्मी थिया। अमेरिकी सेनेट खां मूजिबि ईरान ते हमला दिफ़ाई नौत जा हुया। पासदारनि इंकलाब जे दिफ़ाई थाकनि खे कामयाबी सां निशानो बणायो वियो।
0: हमलनि जे जवाब में ईरान जो अरब मुल्कनि में मौजूदु अमरीकी अॾनि ते वार। कुवैत, बहरीन, उर्दन ऐं इराक में मौजूदु अमरीकी अॾनि ते हमिलो। अमरीकी हेलीकॉप्टर ऐं ड्रोन्स तबाह करण जी दवा। पासदारनि इनकलाब चयो आहे त उर्दन जे कैंप ते नेतनि ते हमले में केतिरा ई अमरीकी फ़ौजी मारिजी विया आहिनि। उर्दन में अमरीकी बेस ते बि हमले में अमरीकी ड्रोन्स खे तबाह कयो वियो आहे। बहरीन में बि अमरीकी अॾनि खे निशानो बणायो वियो आहे। उर्दन बाबति अमरीका जे फायर कयल 15 ब्लास्टिक मिज़ाइल मां 10 तबाह करण जी दावा।
1: वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जी लंडन में सदर आसिफ अली ज़रदारी सां मुलाक़ात। ज़रियुनि जो चवणु आहे त मोहसिन नक़वी सदर आसिफ अली ज़रदारी खे अहम पैगाम पहुचायो। सदर आसिफ अली ज़रदारी नवनि सूबनि जे बहस समेत मुख़्तलिफ़ क़ौमी मामलनि ते पंहिंजे मौक़िफ़ ते क़ाइमु रहण जो पैगाम ॾींदे चयो त क़ौमी मुफ़ाद ख़ातिर समूरनि धुरियुनि खे गॾिजी हलणो पवंदो।
0: मीर रज़ा केस बाबति अदालती कमीशन पुलिस आफ़ीसरनि, टैक्सी ड्राइवरनि, बिज़नेस पार्टनर्स ऐं मक़तूल जे दोस्तनि खे तलब करे वरितो। जुडिशल कमीशन फिरोज़ाबाद जे एसएसओ खे नोटिस जारी करे छॾियो। कमीशन मक़तूल जे घर वारनि, नर्सरी मुलाज़मनि ऐं शुरूआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट कंदड़ डॉक्टरनि समेत ॿियनि जा बयान रिकॉर्ड करे चुकी आहे।
1: इस्लामाबाद ऐं रावलपिंडी में ॿिए ॾींहं बि तूफ़ानी बरसाति, रोड रस्ता ॿुॾी विया। इंतिज़ामिया अलर्ट जारी करे छॾियो। शहरनि खे घरनि में रहण जी हिदायत।
0: मेरापुर में यूसी जीअंदो राजपुर जे चेयरमैन जे घर ते हमले ख़िलाफ़ एहतजाज। ॻोठ टंडरो मीर अली अकबर में यूसी चेयरमैन मीर ममन टालपुर जे घर ते फायरिंग ख़िलाफ़ एहतजाजी धरणो हयो वियो। यूसी चेयरमैन मीर ममन टालपुर जो चवणु आहे त राति देरि सां ॾहनि खां वधीक हथियारबंदनि हमिलो करे फायरिंग कई। हथियारबंदनि दौरान दरवाज़ा टोड़े क़तल करण जी कोशिशि कई वई, पर पुलिस निंड सुतल रही नोटिस वठी जवाबदारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे।
1: ऐं जेकमाबाद में बदमनी चोर चढ़ियल एएसआई जे घर मां 28 लख रुपियनि जी चोरी। ॻोठ अहमद मिया सुमरो मां चोर एएसआई मुनीर ओढो ऐं बाबू जमील जे घरां चोरी करे विया। चोर अलमारीअ जा ताला टोड़े कर्ज़ जा वरितल 28 लख रुपया रोक रक़म ऐं 10 तोला सोना ज़ेवर खणी विया।
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
4: दादू सुठो
3: जीए एफएम 88 नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज।

0: किताब पढ़ी वल रोवल खौफ कनु हिक रब दे रात ओडी हां डरी वल ए सब गालियां ए हां जे हां दे कर कन सुनी वल ए सच लईए तो मकसद मूल न लहस रुगो मुंह जा विचित मरी वल
1: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
2: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है एनपीएस 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस ने जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
2: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

0: काश हमारे पास जैसी गाड़ी होती चमचमाती भी।
1: चलो दिल को संभाल के रखो दुल्हन, ये ना हो कि गाड़ी के चक्कर में तुम्हारा ये ड्राइवर के हाथ से निकल जाए।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले। पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: जो शहर बहजो घर सकरण, आए सकरण जो आवाज
2: GFM 90.8।

थी वन फ्राक बीहर बारो चल दे एक फट गे फटिया पिया चिकन चाक ओ मुखम मसवाक डूब

ਮਨ ਵਿਚਾਰੀਨ ਅਲਾਉ ਤੇ ਮਨ ਪੁਛਾਈਨ ਤਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੇ

میں چاہیے.

इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाजत. और जी इंशाल्लाह मेरी आपसे चर्चा होगी कल ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो द सेम आवर. जिस मत भूलिएगा, जिंदगी गुजार है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. सो दिस इज मी आज Signs out. Take care. Goodbye. Amani khuda. Allah hafiz.

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: वधाइण लाइ बि कानूननि में वधीक नरमी कई वेंदी। अमरीकी फ़ौज जा हिकु भेरो ॿीहर ईरान ते हमला। सिरिक में शादी तकबीर ते बमबारी, 12 ॼणा शहीद, 70 खां वधीक ज़ख़्मी। ईरानी सूबे कुर्दिस्तान जे अहवार में आगाज जारी कयो, जॾहिं त 7 शहरनि खे शहीद कयो। अमरीका सिरिक जे हिकु ॻोठ खे बि निशानो बणायो। शादी तकरीब ते हमलनि जे नतीजे में 5 ॼणा शहीद, 88 खां वधीक ज़ख़्मी थिया। अमरीकी सेंट काम मूजिबि ईरान ते हमला दिफ़ाई नौयत जा हुया। पासदारनि इनकलाब जे दिफ़ाई थाकनि खे कामयाबीअ सां निशानो बणायो वियो। हमलनि जे जवाब में ईरान जो अरब मुल्कनि में मौजूदु अमरीकी अॾनि ते वार। कुवैत, बहरीन, उर्दन ऐं इराक में मौजूदु अमरीकी अॾनि ते हमिलो। अमरीकी हेलीकॉप्टर ऐं ड्रोन तबाह करण जी दावा। पासदारनि इनकलाब चयो आहे त उर्दन जे कैंप ते नेतन जे हमले में केतिरा ई अमरीकी फ़ौजी मारिजी विया। उर्दन में अमरीकी बेस ते हमले में अमरीकी ड्रोन्स खे तबाह कयो वियो। बहरीन में बि अमरीकी अॾनि खे निशानो बणायो वियो आहे। उर्दन पारां ईरान जे फायर कयल 13 ब्लास्टिक मिज़ाइल मां 10 तबाह करण जी दावा। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जी लंडन में सदर आसिफ अली ज़रदारीअ सां मुलाक़ात। ज़रियनि जो चवणु आहे त मोहसिन नक़वी सदर आसिफ अली ज़रदारीअ खे अहम पैगाम पहुचायो। सदर आसिफ अली ज़रदारी नवनि सूबनि जे बहस समेत मुख़्तलिफ़ क़ौमी मामलनि ते पंहिंजे मौक़िफ़ ते क़ाइमु रहण जो पैगाम ॾींदे चयो त क़ौमी मफ़ादनि ख़ातिर समूरनि धुरनि खे गॾिजी हलणो पवंदो। जॾहिं सूबाई असम्बलियूं ऐं पार्लियामेंट चाहींदी त सूबा ठही वेंदा। लंडन में सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे कानून वारे सेनेटर आज़म नज़ीर तारण चयो आहे त वज़ीर आज़म केतिरा ई भेरा अपोज़िशन खे ॻाल्हियुनि जी दावत ॾिनी आहे। आज़ाद कश्मीर में चूंडनि बाद हुकूमत ठही चुकी आहे। अवाम जा मसाला बि हल थी रहिया आहिनि। मीर रज़ा केस बाबति अदालती कमीशन पुलिस आफ़ीसरनि, टैक्सी ड्राइवरनि, बिज़नेस पार्टनर्स ऐं मक़तूल जे दोस्तनि खे तलब करे वरितो। जुडिशल कमीशन फिरोज़ाबाद जे SHO खे नोटिस जारी करे छॾियो। कमीशन मक़तूल जे घर वारनि, नर्सरी मुलाज़मनि ऐं शुरूआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट कंदड़ डॉक्टरनि समेत ॿियनि जा बयान रिकॉर्ड करे चुकी आहे। इस्लामाबाद ऐं
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: सिंध के माथे का झूमर
4: GFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे सतह से मौजूद होते हैं, क्योंकि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए, यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रहे थे। ऐसे बहुत सारी अंटियां, अमियाएं, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी, यानी कि लंच बनाने के दौरान सुबह अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए। आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुन लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्त गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपके होंठों पर 440 की संभालने का काम करती है बरजान ये सिद्रा। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 समाल लाते और यहाँ पर ऐसा करते आगे से प्रोग्राम कर लेते। और आगे से प्रोग्राम जो हम करेंगे तो आपको सुनाने वाले हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा कलाम। तो बहुत ही प्यारा सा कलाम यहाँ पर हमारी लिस्ट में मौजूद है जो कि हम आप लोगों के साथ सुनने वाले कलाम सुनते हैं। और कलाम के बाद हम जैसे ही फौरन बाद वापस आप लोगों के पास मुखातिब होने वाले हैं। तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या होने वाला है आप लोगों के लिए। तो बस आपने क्या करना है, आपने हमारा साथ देना है और आप सुनते रहेंगे और हमारा साथ देंगे पूरे पूरे 3 बजे तक। आप सुन रहे हैं चलती गाना मस्ती और जनाब ये ब्यूटीफुल कलाम आप सब लोगों को डेडिकेट। आइए मिलकर सुनते हैं।

क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सा कलाम जो कि हमने यहाँ पर सुना, और इसी के साथ साथ आप प्रोग्राम सुन रहे हैं चलती का नाम मस्ती आपके सदा के साथ मौजूद है। और मेरे साथ कौन है मुझे बताएं कि जनाब अपने होने का एहसास दिलाए, आप जिंदा है मुझे पता होना चाहिए। और बहुत से लोग जो कि हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो उनको तरीकेकार भी बताए जाएंगे, लेकिन सबसे पहली बात जनाब आज के प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि प्रोग्राम में टॉपिक होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है।

तो आज के प्रोग्राम की अगर टॉपिक की बात की जाए तो फिर आप लोगों से सवाल कुछ इस तरह से होने वाला है कि आप मुझे बताएंगे वो कौन सी चीज है जो रो रो कर मर जाती है, आए हाय रो रो के मर जाती है।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: vacancies, public announcements, events, seminars, special offers, sponsored programs, live mentions or customized promotional campaigns ya kisi bhi kisam ke advertising campaign. GFM hai aapka bharosemand. मीडिया पार्टनर अपनी एडवर्टाइजिंग को दीजिए ज्यादा रीच बेहतर इम्पैक्ट और मौसर नतीजे एडवर्टाइजिंग और बुकिंग के लिए आज ही राब्ता करें स्टेशन मैनेजर बाबर शेख 03009319667
1: GFM 88
2: सिंध की आवाज
3: ख्वाब डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बनजन तो कोई तवां लाए आए एक बेहतरीन मौको सखर जो मोतबर इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में इन सेशन लाए दाखिलाऊं जारी हैं चार सालन जा डिग्री प्रोग्राम्स जी

0: सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, तीन की ताकत मिले।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6
3: आवाज। सभी को वेलकम एंड खुश आमदीद, आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मेपो खास मटियारी सकरण मेहरापुर माथिली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आपके साथ साथ हैं। तो इतने सारे जब लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इकट्ठा होकर हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो जनाब बताइए कहाँ कहाँ से आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं और कितने सारे प्यारे प्यारे लोग हैं जो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाले हैं। अच्छा, तो जिन लोगों को नहीं पता कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल क्या पूछा गया, तो सवाल जरा दोबारा रिपीट करते हैं उन लोगों के लिए जिनको नहीं मालूम। तो सवाल आज के प्रोग्राम का कुछ इस तरह है कि आप मुझे बताएं वो कौन सी चीज है जो रो रो कर मर जाती है। हाँ जी बिल्कुल, इसी सवाल का आपने मुझे जवाब बताना है, वो कौन सी चीज है जो रो रो के मर जाती है। अच्छा, तो आप मुझे 888 और फेसबुक पर ज्वाइन करते जाएंगे।

बिल्कुल आपके मैसेजेस की जानब आते हैं, बिल्कुल आप लोगों के साथ बातें करते हैं, लेकिन मेरे पास जो आप लोगों को सुनाने के लिए अच्छे अच्छे वाले गाने मौजूद हैं। तो मैं क्या सोच रही थी कि टाइम को वेस्ट किए बगैर आइए जरा आप लोगों को एक प्यारा सा गाना सुनाते हैं। तो ये हमारे प्रोग्राम का पहला गाना होने वाला है और गाना सुनते साथ आप लोगों के मैसेजेस की जानब भी आ जाते हैं। बिल्कुल आप सुन रहे हैं चलते गाना मस्ती, आपका हमारे साथ पूरी 3 बजे तक का।

बात है, क्या बात है, गाना सुन रहे हैं, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा गाना एंजॉय कर रहे हैं। साथ ही साथ आप हमारे साथ मौजूद है जी, गाना आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं। तो जरा आपके मैसेजेस की जाने दिया जाते हैं, और यहाँ पर सबसे पहला जो मुझे मैसेज मिला है वो मिला है जी हमारे प्यारे फहीम भाई का। कहते हैं फहीम शेख, सलाम सलाम अदत अदत चाहला खुश आ सफा चाक सलेट कलम हानी गानो बुधा खोली वार पहजा दिल मोहन जी ते कयो तो अलाइजा बिल्कुल लगाते हैं। और आशिक अली मिला हमारे साथ, वालेकुम असलाम जी। कौन कहता है कि मुलाकात नहीं होती, रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती। प्लीज हमें कोई इंडियन गाना सुना दीजिएगा, डेडिकेट अली आजम और अकबर और अबरार खान, मोहम्मद चन्ना, साजन अली लगारी और तारिक बुगियो के नाम। चले जी, इंडियन गाना तो नहीं सुना सकते, बाकी आप सब भाइयों को वेलकम कहा जाता है। और मेरे पास अब्दुल्ला महर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम को, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं प्यारे भाई जान को। और हमारे साथ ही फहीम भाई कहते हैं दादा टॉपिक नहीं पता। अच्छा अच्छा, इरम मुगेरी हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, मेरी दिल पर आपे छाला प्लीज गाना लगाइएगा। और कहती है स्पेशली डेडिकेटिए आपको है, बस चले ठीक है, बस मैं ही इंजॉय करूंगी गाना। और चाचा खालिद कहते हैं बेटा सिडो अस्सलाम वालेकुम, वो अच्छा आपने टॉपिक का जवाब दिया है, क्या बात है क्या बात है। वैसे ये भी हो सकता है,

0: miss you. I always wait for you.
1: क्या बात है, बिल्कुल जी, हमने ओए ओए का सस्ती कॉपी सुन ली. बहुत ही अच्छा गाना. और इसी के साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम सुन रहे, तो आपको वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है. साथ ही साथ मेरे यहाँ से आप लोगों से सवाल पूछा कि आप मुझे बताएंगे वो क्या चीज है जो रो रो के मर जाती है. हाँ जी, जल्दी से बताइए. और हमारे साथ है इरम, कहती है हाँ बिल्कुल ऐसी वाली बात है. बहुत शुक्रिया एडम, आप हमारे साथ हैं. और हमारे साथ हैं जी ये, गुड आफ्टरनून, हाई हाउ आर यू, योर शो इज वेरी नाइस, दिस इज अल्ताफ अली गादी बलोच फ्रॉम कराची. ओके जी, आपको खुश आमदीद कहा जाता है. मजर अली तुनियो हमारे साथ हैं, आपने टॉपिक का जवाब दिया जो कि बिल्कुल दुरुस्त है, थैंक यू. और हमारे साथ मीरू खान चौक से अली अकबर बिरोही भाई, शफन अली मीर बहार और अब्दुल खालिक सियाल आपके साथ मौजूद है. सब भाइयों को वेलकम कहा जाता है, थैंक यू के साथ.

साथ ही वालेकुम अस्सलाम चंदर जानी, कैसी हो? वेलकम टू शो, माशाल्लाह प्यारा शो, प्यारी आरजे अलीजा और मैं साथ में आपका शो सुन रही हैं। और कहती हैं कि कुछ लोग दिल में ऐसे उतर जाते हैं फिर चाहे पास ना हो याद हमेशा आते हैं। सो आपका जवाब दिया जो कि बिल्कुल दुरुस्त है, क्या गाना सुनाया आपने

साइमा मीर मौजूद है। साइमा मीर लिखती है, अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह मक्खन जैसी आरजे, कैसी हो? शो वेरी नाइस, बस सेडी। सॉन्ग्स से जरा गुरेज किया करें। ओके ओके, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। भाई मैं तो चाहती हूँ कि एक भी सैडी गाना प्रोग्राम में प्ले ना हो, लेकिन क्या ही करें भाई, क्या ही करें।

अच्छा सीधा बोले ना एंगेजमेंट करिए घुमा फिरा के बात क्यों करनी है। चलिए जी गाने शुरू कीजिए, गाने के बाद हम जाएंगे जरा न्यूज ब्रेक की जाने, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाली है, तो वापस से जल्दी आप लोगों के पास आएंगे। आप कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए। और हमारे साथ ही मैं जरा यूनस से कनेक्टेड, इनकी जी एफ एम 88 नेटवर्क आप सुन रहे हैं। चलिए जनाब

0: पाकिस्तान किर्गिस्तान विच में मुख्तलिफ़ शोबन में सहकार मुआहिदन ते सयूं वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ ए किर्गिस्तान जो सदर सईन वारी तकरीब में शरीक वापार आई टी समेत दहशतगर्दी खिलाफ़ सहकार वधाइण वारनि मुआहिदनि ते सयूं कई वयूं। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चयो त पाक किर्गिस्तान लाॻापा वक़्त सां मज़बूत थी रहिया आहिनि। ॿई मुल्क दहशतगर्दी ऐं इंतिहा पसंदीअ ख़िलाफ़ गॾिजी कमु कंदा। वापार खे वधाइण लाइ बि कानून में वधीक नरमी कई वेंदी।
1: अमेरिकी फ़ौज जा हिकु भेरो ॿीहर ईरान ते हमला। सेट में शादी तकरीब ते बमबारी, 12 ॼणा शहीद, 70 खां वधीक ज़ख़्मी। ईरानी सूबे खुर्स्तान जे अवाज़ ऐं आगाचारी शहरनि ते हमला कया विया। 7 शहरी शहीद थिया। अमेरिकी सिर्फ़ जे हिकु ॻोठ खे बि निशानो बणायो। शादी तकरीब जे हमले जे नतीजे में 5 ॼणा शहीद ऐं 68 खां वधीक ज़ख़्मी थिया। अमेरिकी सेनेट काम मूजिब ईरान ते हमला दिफ़ाई नौत जा हुया। पासदार इनकलाब जे दिफ़ाई ताक़तुनि खे कामयाबी सां निशानो बणायो वियो।
0: हमलनि जे जवाब में ईरान जो अरब मुल्कनि में मौजूदु अमरीकी अॾनि ते वार। कुवैत, बहरीन, उर्दन ऐं इराक में मौजूदु अमरीकी अॾनि ते हमिलो। अमरीकी हेलीकॉप्टर ऐं ड्रोन्स तबाह करण जी दवा। पासदारनि इनकलाब चयो आहे त उर्दन जे कैंप ते नेतनि खे हमले में केतिरा ई अमरीकी फ़ौजी मारिजी विया आहिनि। उर्दन में अमरीकी बेस ते हमले में अमरीकी ड्रोन्स खे बि तबाह कयो वियो आहे। बहरीन में बि अमरीकी अॾनि खे निशानो बणायो वियो आहे। उर्दन पारां ईरान जे फायर कयल 13 ब्लास्टिक मिज़ाइल मां 10 खे तबाह करण जी दवा।
1: खिते में अमुन ऐं इस्तेकाम जो वाहिद रस्तो ॻाल्हियूं ई आहिनि। पाकिस्तान, अमेरिका ऐं ईरान में छिकताण जे ख़ात्मे लाइ कोशिशूं जारी रखंदो। परॾेही तर्जुमान ताहिर हुसैन अंदराबी चयो आहे त पाकिस्तान, अमेरिका ऐं ईरान में छिकताण वधण बावजूद तकरार ॻाल्हियुनि ज़रिए निबेरण लाइ पुरउमीद आहे।
0: वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जी लंडन में सदर आसिफ अली ज़रदारीअ सां मुलाक़ात। ज़रिए जो चवणु आहे त मोहसिन नक़वी सदर आसिफ अली ज़रदारीअ खे अहम पैगाम पहुचायो। सदर आसिफ अली ज़रदारी नवनि सूबनि जे बस समेत मुख़्तलिफ़ क़ौमी मामलनि ते पंहिंजे मौक़िफ़ ते क़ाइमु रहण जो पैगाम ॾींदे चयो त क़ौमी मफ़ाद ख़ातिर समूरनि धुरनि खे गॾिजी हलणो पवंदो।
1: जॾहिं सूबाई असेंबलियूं ऐं पार्लियामेंट चाहींदी त सूबा ठही वेंदा। लंडन में साफ़िन सां ॻाल्हाईंदे कानून वारे वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ चयो आहे त वज़ीर आज़म केतिरा ई भेरा अपोज़िशन खे ॻाल्हियुनि जी दावत ॾिनी आहे। आज़ाद कश्मीर में चूंडनि बाद हुकूमत ठही चुकी आहे। अवाम जा मसला बि हल थी रहिया आहिनि।
0: मीर रज़ा केस बाबति अदालती कमीशन पुलिस आफ़ीसरनि, टैक्सी ड्राइवरनि, बिज़नेस पार्टनर्स ऐं मक़तूल जे दोस्तनि खे तलब करे वरितो। जुडिशल कमीशन फिरोज़ाबाद जे एसएचओस खे नोटिस जारी करे छॾियो। कमीशन मक़तूल जे घर वारनि, नर्सरी मुलाज़मनि ऐं शुरूआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट कंदड़ डॉक्टरनि समेत ॿियनि जा बयान रिकॉर्ड करे चुकी आहे।
1: इस्लामाबाद ऐं रावलपिंडी में ॿिए ॾींहं बि तूफ़ानी बरसाति। रोड रस्ता ॿुॾी विया। इंतिज़ामिया अलर्ट जारी करे छॾियो। शहरनि खे घरनि में रहण जी हिदायत करे छॾी।
0: मेरापुर में यूसी जीअंदो राजपुर जे चेयरमैन जे घर ते हमले ख़िलाफ़ एहतजाज। ॻोठ टंडरो मोहम्मद अलीअ में अकबर में यूसी चेयरमैन मीर हसन टालपुर जे घर ते फायरिंग ख़िलाफ़ धरणो हयो वियो। यूसी चेयरमैन मीर हुसैन टालपुर चवणु आहे त राति देरि सां 10 खां वधीक हथियारबंदनि घर ते हमिलो करे फायरिंग कई। हथियारबंदनि दरवाज़ा टोड़े क़तलु करण जी कोशिशि कई पर पुलिस बुर निंड सुतल रही। नोटिस वठी जवाबदारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे।
1: घोटकी में नौजवान जी गुमशुदगी ख़िलाफ़ कोलाची बरादरी जे माण्हुनि जो एहतजाज। नौजवान फिदा हुसैन कोलाची जी गुमशुदगी ख़िलाफ़ सेक्शन थाणे खां प्रेस क्लब ताईं रैली कढी वई। मुज़ाहिरीन चयो आहे त पुलिस नौजवान फिदा हुसैन कोलाची खे गिरफ़्तार करे गुम करे छॾियो आहे। नौजवान खे फौरी तौर ज़ाहिर कयो वञे।
0: अकरी चौधगीअ में रक्षा ड्राइवरनि खां फुर ख़िलाफ़ ड्राइवरनि ऐं शहरनि जी एहतजाजी रैली धरणो। मोहम्मद हसन ऐं आरब शर खां फुर ख़िलाफ़ रक्षा ड्राइवरनि शहरनि प्रेस क्लब अॻियां धरणो हयो। संदन चवणु आहे त करूंडी रतड़ पुल वटां हथियारबंदनि रक्षा ड्राइवरनि खां रक़म ऐं फोन्स फुर करे आसानी सां फरार थी विया आहिनि। फुर थियल रक़म ऐं फोन्स वापसि कराया वञनि।
1: ऐं गंबट में मंशा जे विकिरे ख़िलाफ़ रहवासी सरापा एहतजाज। अॾा बंद कराइण जो मुतालबो। शहरनि ऐं सियासी समाजी कारकुननि फुल बाग खां प्रेस क्लब ताईं एहतजाजी मुज़ाहिरो करे रैली कढी आहे। शहरनि जो चवणु आहे त मंशात जे विकिरे सबबि नौजवान नसल तबाही जे किनारे ते पहुची वियो आहे। मंशात फरोशनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे।
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है एनपीएस तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

और जी हमारे साथी विलेज गुलाम कासिम सोलंगी फ्राम हिंगोरजा से दिलावर हुसैन सोलंगी भाई कहते हैं बाजी सदरा केसी ये टॉपिक का जवाब बिल्कुल दुरुस्त बाजी हम आपका शो बड़े शौक से सुनते हैं आज हमें शमन का गाना सुनाना ओके जी ओके बिल्कुल सुनाते हैं और कहते हैं थैंक यू डेडिकेट नजीर सोलंगी मुदस्सिर सोलंगी मुबशिर सोलंगी आसिफ सोलंगी एंड जमादार खुदा बख्श सोलंगी ओके जी और ये हमारे साथी हैं जी कहते हैं दादा टॉपिक अच्छा ठीक है मुझे आज आपके मैसेजेस थोड़े अलग अलग क्यों लग रहे लग रहा है कि फहीम तो है ही नहीं ऐसे क्यों वाइब आ रही है पता नहीं भाई देखेंगे और उसके अलावा हमारे पास एक गाना मौजूद है तो हम जरा निगत नाज की आवाज में ये प्यारा सा गाना सुन लेते हैं आज मुझे पता नहीं क्यों एक सस्ती कॉपी वाले गाना सुनने का चढ़ा हुआ है तो हम ये वाला गाना भी इंजॉय करते हैं जो ये बहुत खूबसूरत होने वाला है जाहिर सी बात है निगत नाज ने गाया है तो खूबसूरत हो गया है और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चंदी का नाम मस्ती आखिर सिद्रा के साथ मौजूद है मेरे साथ कौन है बताए ना पता चले

बाद आगे गाना कंटिन्यू करेंगे, लेकिन साथ साथ यहाँ पर आप हमारे साथ मौजूद हैं जी। ये जवाब दिया है आपने हमें, जो कि पता नहीं क्या ही सोच कर जवाब दिया होगा, ये मौजूद है। हाय क्रिस, आप योर शो इज वेरी नाइस, प्लीज प्ले सॉन्ग अखड़न जा ओ जागा। ओके दिस इज अल्ताफ अली गाती बलोच फ्रॉम कराची। ओके थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ। और गुल हसन हमारे साथ हैं, आपने लिखा है जात है मेरी निंदवानी। ओके जी, निंदवानी अगर मैं गलत रीड कर रही हूँ तो उसके लिए माजरत करते, क्योंकि आपने ऐसे ही लिखा है। और कहते हैं फ्रॉम एफ जेड ओ स्टाफ से, शो वेरी वेरी नाइस है, प्लीज बाजी दिल वाले फिल्म का सॉन्ग चलाना। ओ जीता था जिसके कैसी बातें करते हैं भाई, इंडियन गाने जबकि हम नहीं लगाते हैं तो फिर आकर इंडियन गानों की फरमाइश कर देते हैं। कसम से बड़ी डेडिकेट फरमाइश किया है, मेरा बेटा है खान आमिर खान, मोहम्मद रिजवान और मेरा भाई है एहसन अली खान। क्या बात है जी, सारे खान इकट्ठा हो चुके हैं। सबको वेलकम, इनको शामदीद कहा जाता है। जी आप हमारे वहाँ के अमा जी पूरी टीम के, प्लीज मैडम नूरजहां जो कोई भी गानों डेडिकेट कंदा भूरो खान लाखो आजिज अमानुल्ला विस्तरो हमारे साथ है। ओके ओके आई ट्राई, आपकी फरमाइश पर हम मैडम नूरजहां का गाना लाजमी सुनेंगे। वैसे मैं सबको बोल रही हूँ आपके गाने चलाएंगे, गाने चलाएंगे, टाइम इतना थोड़ा सा होता है, फरमाइश इतनी ज्यादा आ जाती है तो किस किस की मैं लगाऊंगी ये भी सोचने वाली बात होती है।

बात है, वैसे तो आप जानती है कि निगत नाज के बाद जाहिर सी बात है मुमताज मौलाई साहब आते, लेकिन आज ऐसा था कि इस वाले गाने की फरमाइश थी तो मैंने सोचा कि भाई मुमताज मौलाई को जरा छुटा कराते और हम ये वाला गाना सुनते क्योंकि फरमाइश सबसे पहले।

बिल्कुल जी, गाने के बाद हम जरा जाएंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जाने, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए। जी एम एट नेटवर्क, आप मस्ती।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद FM 91.6।
1: इस टाइम अगर खूबसूरती चाहिए तो ब्यूटी वेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में। डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडिएंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो आर्च ब्यूटी क्रीम।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को। पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
4: GAFM 88
3: नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज।

शादाब आदमी बहुत ही खूबसूरत सा गाना जो कि आप एंजॉय कर रहे हैं, साथ ही साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं। जल्दी के नाम मस्ती आपके सत्र के साथ मौजूद है। हम आ चुके हैं प्रोग्राम के लास्ट लिंक में। अगले तो आपको वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखे मोरो मित्र खास मतियारी सखे मेहरा पर माथिली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप हमारे साथ हैं।

बता दें बहुत ही खूबसूरत सा गाना, जो कि आप इंजॉय करें समन मिराली की आवाज में। इस गाने को हम धीरे गिर कर देंगे जी हमारे प्यारे जयपाल भाई जान को। जयपाल भाई भी हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल जी, आपके मैसेजेस पढ़ते हुए, यहाँ पर मैसेजेस जो है वो काफी जमा हो चुके हैं, तो ये हमारे साथ हैं जी। हाउ आर यू सिद्रा जी? वो जवाब है, बिल्कुल आपका जवाब सही है, जो हमारे लिए जान दे देती है। ओके ओके। अठहत्तर मोड़ी से राजा हमीरचंद है, किशोर कुमार, हीरा लाल, सुरेश और गफार महर, प्लीज प्ले हदीका क्यानी मरवाड़ी आला छाछा लिखे तो वगे। अच्छा, मरवाड़ी में ही आपने मैसेज लिख दिया है, क्या बात है जी, इतनी ज्यादा नहीं आती। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। आप सब भाइयों को वेलकम कहा जाता है। इस एम कहती है, सलाम मुस्कान जाने कैसी आप, अल्लाह को हमेशा खुश रखे, हर मुश्किल हर बुरे इंसान से बचाए जाना, आमीन आमीन। आपको एक बात बतानी है,

यहाँ पे लिखा है कि मेरे खास सलाम दीजिएगा आपको आपकी अम्मी और सायमा मीर आपकी दीवानी एस ए ना के साथ है। ओके जी, ये जो आपने मुझे बात बताई ना ये सही है, इसमें बुराई क्या है? कोई हो जाए। और शादी खालत कहते हैं बेटा सिद्धू सॉन्ग की रिक्वेस्ट जी पारत था, बिल्कुल पारत है पारत। और कहते हैं मेरे SMS रीड किए आपने या नहीं, क्योंकि रेडियो सखर पर शो स्टॉप हो चुका, बाकी फेसबुक पर जाता हूँ तो पैनल पर SMS कैसे करूँ। और इस मसले का सलूशन बताएं प्लीज। वैसे आप को जो ऐप में बताती हूँ ना वो बस आप डाउनलोड करके उस पर आराम से आप मेरा शो सुन सकते हैं, क्योंकि आपका वो बैकग्राउंड ऐप पे चलता रहेगा, आप अदरवाइज सारे काम करते रहेंगे फोन में, आपका रेडियो चलता रहेगा, तो वो आप बस अपने फोन में इंस्टॉल कर लें और उससे आप हमारा प्रोग्राम सुनेंगे तो आपको ज्यादातर जो है ना वो आसानी हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐप वर्क करता है बहुत अच्छे से। और रोबोट हाची गुलाम खास के लिए लग झंडो मरी खां कुर्बान अली खास के लिए असो प्रोग्राम बुधी पो, सो थैंक यू सो मच तवे भी चौदह भली करी आया। और मैडम नूरजहां के गाने की किसी ने फरमाइश कर दी थी ये गाना उनको डेडिकेट जाता है। और मीरो खान चौक से अली अकबर बिरोही कहते हैं शफन अली मीर बहार और अब्दुल के बाद शायद आपका मैसेज है वो मिसिंग पार्ट हो चुका है, सो आप भाइयों को वेलकम कहा जाता है।

साथ हमारी फजली है, कहती है अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट स्टार से सदरा मुस्कान, कैसी हो? मैं ठीक, बहुत अच्छी, तुम बताओ? कहती सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम इन कायनात और सब स्वीट सिस्टर्स को। कहती कायनात आपका शो बहुत पसंद करती है जाना, सलाम दे मेरी प्यारी को। ओके जी, कायनात को आपका सलाम पहुंच गया, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हमारी फजली।

बहुत ही प्यारा गाना जो कि हम एंजॉय कर रहे थे। ये साजे बोलते ही ना गाना तो लगाती हूँ बाजी लेकिन वो सुनने नहीं देती है, तो चले गाने सुनने भी दे रही हूँ आजकल मियां को। और जो यहाँ पर मकसूद मिला हमारे साथ मेहरापुर से, कहते सदरा मुस्कान चलती का नाम मस्ती प्रोग्राम और सुनाओ क्या हाल है। और मुझे अख्तियार दायो का गाना सुनाना, अख्तियार दायो का गाना खैर अभी तो नहीं प्ले हो सकता, मैं आपको 5 बजे वाले प्रोग्राम में सुनाऊंगी या फिर कल वाले प्रोग्राम में सुन लेंगे। और हमारे साथी सलाम भाऊ, वालेकुम असलाम भाऊ, और कहते हैं ज्वाइन किया एंड और क्या वेलकम मी, ओके ओके ओके वेलकम टू यू प्यारे भाई। और क्या कहते हैं, इंसान अगर यकीन के काबिल होता तो हर वक्त दो फरिश्ते उसके साथ ना होते। जयपाल भाई क्या बात है, कितनी कमाल बात आपने बयां कर दी है। और कहते भाऊ जी जनाब कोई आज मस्त सा शमन का गाना तो लगा दो, आपकी मेहरबानी होगी। बिल्कुल जी, हमने मिलकर एंजॉय किया, बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा सा शमन का गाना। और रसूलाबाद से अब्दुल सिंह शम्बानी भाई, वालेकुम अस्सलाम। और अदी वो है, आपने टॉपिक का जवाब दिया जो कि बड़े ही मुझे लगता है कि दिल से ये जवाब आपने सोचकर मुझे दिया है, सो बहुत शुक्रिया आपके मतलब आपके मैसेजेस की बड़ी कदर है, थैंक यू सो मच आप हमारे साथ। और ये हमारे साथी वालेकुम अस्सलाम विलेज याम खान साहब की से शाहजेब एंड शाहजहान साहब की, ओके दोबारा से आपने मैसेज कर दिया है, बहुत शुक्रिया आपका गाना लगाया, आई होप आपने एंजॉय करा होगा। ओके जी, ये नाही बख्तर की आवाज में गाना है, उस भाई को डेडिकेट जाता है जिसने फरमाइश कर दी थी।

बात है, बहुत ही प्यारा सा गाना आप यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे पास जो वक्त है ना वो भी बड़ा तेजी से गुजरता जा रहा है। और मकसूद मल्हा आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। ये हमारे साथ जयपाल भाई लिखते हैं, हर रात एक नाम याद आता है, कभी सुबह तो कभी शाम याद आता है, सोचता हूँ कि कर लो दूसरी बार मोहब्बत लेकिन पहली मोहब्बत का अंजाम याद आता है। क्या बात है, बहुत बेहतरीन एवं कहती है। बहुत शुक्रिया एवं, थैंक यू। और जयपाल भाई कहते हैं, भाई सलाम सुहेल दिवेक एंड राहुल भाऊ को। ओके जी, ओके, सब भाइयों को सलाम एंड वालेकुम असलाम एंड वेलकम। अच्छा जी खालिद, आपको वेलकम हो गया जी लास्ट लिंक में। गुल हसन हमारे साथ है, नंदवानी फ्रॉम फिरोज, फिरोज महर लाइक थाका बाजी, मेरा गाना चलाओ, जीता था जिसके लिए अदा, ये इंडियन गाना ऐसा न था लायो, हलाई दासी तो मतलब थोड़ो फडा हो जाएगा इन जी करे, तां पाकिस्तानी गानों फरमाइश कयो, सिंधी गानों फरमाइश कयो, जेको तव्हांजी दिलचस्प इंडियन गानन का थोड़ो गुरेज कयो। और हमारे साथ हैं जी, सुन रहे हैं, नाम खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया, आपने भी टॉपिक का जवाब दिया।

खूबसूरत से लगाया है तो हम साथ साथ गाना एंजॉय करेंगे। और आज जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था वो बिल्कुल ये पूछा था कि आप मुझे बताएं कि वो कौन सी चीज है जो रो रो के मर जाती है, तो उसका अभी जवाब देखा जाए तो वो होगा मोमबत्ती और दूसरा बर्फ है वो भी। हाँ सही कह सकते हैं, तो ये इसका सही जवाब होगा मोमबत्ती और बर्फ। बाकी जो लोग जिनको नहीं था पता सवाल का जवाब उनको पता चल गया, बाकी जिन लोगों ने सही जवाब दिया है उनका बहुत ही शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप बहुत होशियार हैं। अच्छा जयपाल भाई कहते हैं भाऊ यहाँ पर न्यू दोस्त किए हैं, क्या करूँ अच्छे हैं ये भी अच्छी बात है भाई, नए फ्रेंड्स बनाने चाहिए। एंजॉय करना चाहिए, सही बात है।

गाने को डेडिकेट करते हैं जी चाचे को, क्योंकि चाचे ने फरमाइश कर दी थी इस गाने की। डेडिकेट किसको किया? किसी को तो भी नहीं। चलें जी हम एंजॉय कर लेते हैं। शेख भी हमारे साथ माजुद, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। और इसी के साथ साथ जो यहाँ पर आप लोगों से लेते हैं इजाजत, वरीम सुल्तान से मुलाकात मुझे जेका थी भाई हुआ पंच बजे वाले प्रोग्राम में थी सो पांच बजे सिर्फ ख्याल रखना है कि थी क्या गलती थी मुझे तो माजरत कहूँ था जिन्हें फीडबैक रेजी वैन से गाना रेजी वैन सभी का माजरत कहूँ था सो मुकलानी ना ही बाबू सन सलामत सा सलामत अल्लाह हाफिज बाय लव यू ऑल।

0: सिंध संभलीअ में सूबनि बाबति पेश कयल रिथ ते बहस जारी। रिथ ते बहस कंदे सूबाई वज़ीर मोहम्मद बख्शमार चयो आहे त पाकिस्तान जो बुनियाद सिंध आहे ऐं सिंध जो बुनियाद पाकिस्तान आहे। सिंध ऐं पाकिस्तान खे केर बि अलॻि नथो करे सघे। सिंध में को बि नओं सूबो क़बूल न हूंदो। एमकेएम जे एमपीए कुरतुलेन चयो त इंतिज़ामी यूनिट्स में वाध वक़्त जी ज़रूरत आहे। सिंध जी विरासत न पर इंतिज़ाम जी बहितरी ॻाल्हि थी रही आहे। हीरो सूबो चयो त सिंध जे वाध ते को बि समझौतो न थींदो। जॾहिं त हलार वसाणा चयो त सिंध खे विरिहाइण या कराची खे अलॻि करण जी का बि कोशिशि क़बूल न कई वेंदी। सिंध जा माण्हू रिवायतुनि ऐं तारीख़ी सुञाणप कंहिं नए सूबे जे क़याम खे क़बूल न कंदा।
1: वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जी लंडन में सदर आसिफ अली ज़रदारी सां मुलाक़ात। ज़रियुनि जो चवणु आहे त मोहसिन नक़वी सदर आसिफ अली ज़रदारी खे अहम पैगाम पहुचायो। सदर आसिफ अली ज़रदारी नवनि सूबनि जे बहस समेत मुख़्तलिफ़ क़ौमी मामलनि ते पंहिंजी मौक़िफ़ ते क़ाइम रहण जो पैगाम ॾींदे चयो आहे त क़ौमी मुफ़ाद ख़ातिर समूरनि धुरनि खे गॾिजी हलणो पवंदो।
0: जॾहिं सूबाई संभलियूं ऐं पार्लियामेंट चाहींदी त सूबा ठही वेंदा। लंडन में साहिबनि सां ॻाल्हाईंदे कानून वारे वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ चयो आहे त वज़ीर आज़म केतिरा भेरा अपोज़िशन खे ॻाल्हियुनि जी दावत ॾिनी आहे। आज़ादु कश्मीर में चूंडनि बाद हुकूमत ठही चुकी आहे। अवाम जा मसइला बि हल थी रहिया आहिनि।
1: पाकिस्तान ऐं कर्गिस्तान विच में मुख़्तलिफ़ शोबनि में सहकार ऐं मुआहिदनि ते सहियूं। बेगचिक में वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं कर्गिस्तान जो सदर सैन वारी तक़रीब में शरीक थियो। वापारु आई टी समेत दहशतगर्दी ख़िलाफ़ सहकार वधाइण वारे मुआहिदनि ते सहियूं कयूं वयूं। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त पाक कर्गिस्तान लाॻापा वज़ीर वक़्तु मज़बूत थी रहिया आहिनि। ॿिए मुल्क दहशतगर्दी ऐं इंतिहापसंदी ख़िलाफ़ गॾिजी कमु कंदा। वापार खे वधाइण लाइ बि कानूननि में वधीक नरमी कई वेंदी।
0: अमेरिकी फ़ौज जा हिकु भेरो ॿीहर ईरान ते हमला। सेरिक में शादी तक़रीब ते बमबारी। 12 ॼणा शहीद, 70 खां वधीक ज़ख़्मी। ईरानी सूबे कुर्दिस्तान में हवास ते ऐं आगाज़ जारी शहरनि ते हमला कया विया। 7 शहरी शहीद। अमेरिका सेरिक जे हिकु ॻोठ खे बि निशानो बणायो वियो। शादी तक़रीब ते हमले जे नतीजे में 5 ॼणा शहीद ऐं 68 खां वधीक ज़ख़्मी थिया। अमेरिकी सेंटकॉम मूजिबि ईरान ते हमला दिफ़ाई नौयत जा हुया। पासदारनि इनकलाब जे दिफ़ाई थाकनि खे कामयाबीअ सां निशानो बणायो वियो।
1: हमलनि जे जवाब में ईरान जो अरब मुल्कनि में मौजूदु अमेरिकी अॾनि ते वार। कुवैत, बहरीन, उर्दन ऐं इराक में मौजूदु अमेरिकी अॾनि ते हमिलो। अमेरिकी हेलीकॉप्टर ऐं ड्रोन तबाह करण जी दावा। फाज़ल इनकलाब चयो आहे त उर्दन जे कैंप तटनि ते हमले में केतिरा ई अमेरिकी फ़ौज मारिजी विया आहिनि। उर्दन में अमेरिकी बेस ते हमले में अमेरिकी ड्रोन्स खे तबाह कयो वियो आहे। बहरीन में बि अमेरिकी अॾनि खे निशानो बणायो वियो आहे। उर्दन पारां ईरान जे फायर कयल 13 बैलिस्टिक मिज़ाइल्स मां 10 तबाह करण जी दावा।
0: खिते में अमन ऐं इस्तेहकाम जो वाहिद रस्तो ॻाल्हियूं ई आहिनि। पाकिस्तान अमरीका ऐं ईरान में शिकतान जे ख़ात्मे लाइ कोशिशूं जारी रखंदो। परॾेही तर्जुमान ताहिर हुसैन इंद्राबीअ चयो आहे त पाकिस्तान अमरीका ऐं ईरान में शिकतान वधण बाबति तकरार ॻाल्हियुनि ज़रिए निबेरण लाइ पुरउमीद आहे।
1: क़ौमी असेंबली जी कम्युनिकेशन कमेटीअ जो NHA सखर जे जी एम सुल्तान अबड़ो खे मुअतल करण जो हुकुम। सखर शिकारपुर रोड जो 22 किलोमीटर मरम्मती कम नाक़िस करार। क़ौमी असेंबली जे कम्युनिकेशन कमेटीअ जो इजलास एजाज़ अखरान जी सदारत हेठि थियो। मुख़्तलिफ़ स्कीमनि जो जाइज़ो वरितो वियो। कमेटी जे हिदायत ते NHA चेयरमैन सुल्तान अबड़ो खे मुअतल कयो। NHA चेयरमैन इजलास खे आगाही ॾींदे चयो आहे त हैदराबाद खां कराचीअ ताईं हिकु धार मोटरवे M10 तामीर कयो वेंदो। सखर हैदराबाद मोटरवे जो कम बि अक्टूबर में शुरू थींदो। M10 ते 500 अरब रुपियनि जो मनसूबो आहे।
0: वॾे वज़ीर सिहत मुराद अली शाह सां गेट्स फाउंडेशन जे जेंडर बाबति सदर डॉक्टर अनीता ज़ैदीअ जी मुलाक़ात। थ्राइंग फ्यूचर फंड तहत माउ ऐं ॿार जे सिहत, गिज़ायत ऐं हिफ़ाज़ती टुकनि ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं। मुराद अली शाह चयो त ॿारनि में गिज़ाई खोट ऐं स्टेटिंग जो ख़ात्मो हुकूमत जी तरजीह आहे।
1: मलिर जे लासी गोठ में मुबैना पुलिस तशद्दुद में नौजवान इरशाद बलोच जे कतल खिलाफ वारसन जो एहतजाज वारसन इल्ज़ाम आयो आहे त इरशाद बलोच खे प्राइवेट माण्हू ने पुलिस घरां खंभे तशद्दुद करे कतल कयो। एसपी अली हसन शेख जी जांच कमेटी ते एतमाद नाहे, जांच कंहिं ॿिए ज़िले जे एसएसपी हवाले कई वञे।
0: गंबट जा 31 प्राइमरी स्कूल खतरनाक करार, 16 स्कूलन में उस्ताद मुकरर न थिया। टीओ प्राइमरी गंबट स्कूलन की सूरत हाल बाबत रिपोर्ट अख्तियारन के मोकिले छी। टीओ फिदा मला जो चवण है तालके जे 31 स्कूलन जो इमारतूं ज़बून आहिनि, कंहिं वक़्त भी वॾो सानो थी सघे थो। 16 स्कूलन में उस्ताद मुकरर न आहिनि जंहिं सबब शागिर्दनि जो मुस्तक़बिल दाह ते लॻल आहे। ख़तरनाक करार ॾिनल स्कूलन में प्राइमरी स्कूल मुरीद खान मरी, अला बख़्श खोड़ो, बिलाड़ो ऐं ॿिया स्कूल शामिल आहिनि, जॾहिं त प्राइमरी स्कूल हबीबुला हुजण, गंवर पंवर, कंडो, नारे जो ऐं ॿियनि स्कूलनि में उस्ताद मुक़ररु न थी सघिया आहिनि।
1: हाला में जेड़े बाद एक दुर जो स्कूल ते हमलो बजना जख्मी मखदूम गुलाम हैदर हाई स्कूल में डायरी ऐं फ्रॉश बरादरी सां ताल्लुक रखंदड़ शागिर्दन में जेड़ो थियो। उस्तादन पारां शागिर्दन में ठाह करण बावजूद लाहिरी धुर जे स्कूल ते कहा लठिन ऐं डंडन जो इस्तेमाल बजना जख्मी वाके खिलाफ़ उस्तादन ऐं शागिर्दन जो एहतजाज।
0: मेरापुर में यूसी जीअंदो राजपुर जे चेयरमैन जे घर ते हमले ख़िलाफ़ एहतजाज। ॻोठ टंडो मीर अली अकबर में यूसी चेयरमैन जे घर ते फायरिंग ख़िलाफ़ धरणो हयो वियो। यूसी चेयरमैन जो चवण आहे त राति देरि सां 10 खां वधीक हथियारबंदनि घर ते हमिलो करे फायरिंग कई। हथियारबंदनि दरवाज़ा टोड़े क़तल करण जी कोशिशि कई पर पुलिस निंड सुतल रही। नोटिस वठी जवाबदारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे।
1: घोटकी में नौजवान की गुमशुदगी खिलाफ कोलाची बरादरी के मानून जो एहतजाज। नौजवान फिदा हुसैन कोलाची की गुमशुदगी खिलाफ एस सेक्शन थाने का प्रेस क्लब तक रैली कढ़ी वही। मुजाहिरन है तो पुलिस नौजवान फिदा हुसैन कोलाची के गिरफ्तार कर गुम कर छोड़ो है। नौजवान के फौरी तौर जाहिर कर वे।

0: ऐं शहरनि प्रेस क्लब अॻियां एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो आयो। संदन चवण आहे त करूंडी रतड़ पुल वटां हथियारबंद रक्षा ड्राइवरनि खां फुर मोबाइल फोन्स ऐं ॿिया सामान फुर करे फरार थी विया।
1: जिंदगी
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ जीए एफएम 88 नेटवर्क ते।
3: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
4: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: ब्रेकिंग न्यूज, द मोस्ट वांटेड गैंग ऑफ द टाउन इज रोमिंग अराउंड एंड स्टिल ऑन द रन। इट हैज बीन रिपोर्टेड दैट दे आर अबाउट टू रॉब द रॉयल बैंक ऑफ पाकिस्तान। Deputy Commissioner of the Police thereby has advised the citizens to stay safe.

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मेरे YouTube चैनल नदीमा बास खान को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नए आने वाले गीतों को सुनने के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाइए।

0: मेरे YouTube चैनल नदीम अब्बास खान को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नए आने वाले गीतों को सुनने के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाइए।
1: आप सुन रहे हैं
2: DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

सुनते हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क।
1: लंदन में सदरा सवेली जरदारी से मुलाकात, जरीन जो चवणा है तो मोहसिन नकवी सदरा सवेली जरदारी के अहम पैगाम पहुंचाया। सदरा सवेली जरदारी नवन सूबन के बहस समेत मुख्तलिफ कौमी मामलन ते पेंजे मौकिफ ते कायम रहने जो पैगाम दींदे चयो त कौमी मुफाद खातिर समूरन धुरन के गॾिजी हलणो पवंदो।
2: जॾहिं सूबाई असेंबलियूं ऐं पार्लियामेंट चाहींदी त सूबा ठही वेंदा। लंडन में साहबनि सां ॻाल्हाईंदे कानून वारे वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर तारण चयो त वज़ीर आज़म केतिरा भेरा अपोज़िशन खे ॻाल्हियुनि जी दावत ॾिनी आहे। आज़ाद कश्मीर में चूंडनि बाद हुकूमत ठही चुकी आहे, आवाम जा मसइला बि हल थी रहिया आहिनि।
1: पाकिस्तान किर्गिस्तान विच में मुख्तलिफ़ शोबनि में सहकार ऐं मुहिदनि ते सयूं। बख़्श में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ऐं किर्गिस्तान जो सदर सहन वारी तकरीब में शरीक थिया। वापार आई टी समेत दहशतगर्दी ख़िलाफ़ सहकार वधाइण वारनि मुहिदनि ते सयूं कयूं वयूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ चयो त पाक किर्गिस्तान लाॻापा वक़्त सां मज़बूत थी रहिया आहिनि। ॿिए मुल्क दहशतगर्दी ऐं इंतिहापसंदी ख़िलाफ़ गॾिजी कमु कंदा। वापार खे वधाइण लाइ बि कानूननि में वधीक नरमी कई वेंदी।
2: अमेरिकी फ़ौज जा हिकु भेरो ॿीहर ईरान ते हमला। सेरिक में शादी तक़रीब ते बमबारी, 12 ॼणा शहीद, 70 खां वधीक ज़ख़्मी। ईरानी सूबे कुर्दिस्तान जो अहवाज़ में आगाज़ जारी शहरनि ते हमला कया विया। 7 शहरी शहीद थिया। अमेरिकी सिरक जे हिकु ॻोठ खे बि निशानो बणायो वियो। शादी तक़रीब ते हमले जे नतीजे में 5 ॼणा शहीद, 68 खां वधीक ज़ख़्मी थिया। अमेरिकी सेंटकॉम मूजिबि ईरान ते हमला दिफ़ाई नोयत जा हुया। पासदारनि इनकलाब जे दिफ़ाई थाकनि खे कामयाबीअ सां निशानो बणायो वियो।
1: हमलनि जे जवाब में ईरान जो अरब मुल्कनि में मौजूदु अमेरिकी अॾनि ते वार, कुवैत, बहरीन, उर्दन ऐं इराक में मौजूदु अमेरिकी अॾनि ते हमिलो, अमेरिकी हेलीकॉप्टर ऐं ड्रोन्स तबाह करण जी दावा। पाज़र इनकलाब चयो आहे त उर्दन जे कैंप ततनि ते हमले में केतिरा ई अमेरिकी फ़ौजी मारिजी विया आहिनि। उर्दन में अमेरिकी बेस ते हमले में अमेरिकी ड्रोन्स खे तबाह कयो वियो आहे। बहरीन में बि अमेरिकी अॾनि खे निशानो बणायो वियो आहे। उर्दन पारां ईरान जे फायर कयल 13 बैलिस्टिक मिज़ाइल्स मां 10 तबाह करण जी दावा।
2: खिते में अमन ऐं इस्तेहकाम जो वाहिद रस्तो ॻाल्हियूं ई आहिनि। पाकिस्तान अमरीका ईरान में शिकताण जे ख़ात्मे जूं कोशिशूं जारी रखंदो। परॾेही तर्जुमान ताहिर हुसैन इंद्राबीअ चयो आहे त पाकिस्तान अमरीका ईरान में शिकताण वधण बावजूद तकरार ॻाल्हियुनि ज़रिए निबेरण लाइ पुरउमीद आहे।
1: क़ौमी असेंबली जी कम्यूनिकेशन कमेटीअ जो NHA सखर GJM सुल्तान अबड़ो खे मुअतल करण जो हुकुम। सखर शिकारपुर रोड जो 22 किलोमीटर मरमती कम नाक़िस करार। क़ौमी असेंबली जी कम्यूनिकेशन कमेटीअ जो इजलास एजाज़ जखराणी जी सदारत हेठि थियो। मुख़्तलिफ़ स्कीमनि जो जाइज़ो वरितो वियो। कमेटीअ जे हिदायत ते NHA चेयरमैन सुल्तान अबड़ो खे मुअतल कयो। NHA चेयरमैन इजलास खे आगाही ॾींदे चयो त हैदराबाद खां कराचीअ ताईं हिकु धार मोटरवे M10 तामीर कयो वेंदो। सखर हैदराबाद मोटरवे जो बि कम अक्टूबर में शुरू थींदो। M10 ते 500 अरब रुपियनि जो मनसूबो आहे।
2: वॾे वज़ीर सिहत मुराद अली शाह सां गेट्स फाउंडेशन जे जेंडर बाबति सदर डॉक्टर अनीता ज़ैदीअ जी मुलाक़ात। रैंक फ्यूचर फंड तहत माउ ऐं ॿार जे सिहत, गिज़ायत ऐं हिफ़ाज़ती टुकनि ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं। मुराद अली शाह चयो त ॿारनि में गिज़ाई खोट ऐं स्टिंग जो ख़ात्मो हुकूमत जी तरजीह आहे।
1: कराची में सुपर हाईवे वटि पेट्रोल पंप ते कार ते फायरिंग। हिकु शख़्स मारिजी वियो, हिकु ज़ख़्मी मारिजी वियल ऐं ज़ख़्मी जी सुञाणप न थी। लाश अबासी शहीद इस्पताल मुंतकिल कयो वियो।
2: गंबट जा 31 प्राइमरी स्कूल ख़तरनाक करार। 16 स्कूलनि में उस्ताद मुक़ररु न थिया। 30 प्राइमरी गंबट स्कूलनि जी सूरत हाल बाबति रिपोर्ट इख़्तियारनि खे मोकिले छॾी। TO फिदा मला जो चवणु आहे त तालके जे 31 स्कूलनि जूं इमारतूं ज़बून आहिनि, कंहिं बि वक़्तु वॾो सानियो थी सघे थो। 16 स्कूलनि में उस्ताद मुक़ररु न आहिनि थियल, जंहिं सबबि शागिर्दनि जो मुस्तक़बिल दाह ते लॻल आहे। ख़तरनाक करार ॾिनल स्कूलनि में प्राइमरी स्कूल मुरीद खान मरी, अला बख़्श खोड़ो, बिलाड़ो ऐं ॿिया स्कूल शामिल आहिनि, जॾहिं त प्राइमरी स्कूल हबीबुला हुजण, कंवर पवर, कंडू नारे जो ऐं ॿियनि स्कूलनि में उस्ताद मुक़ररु न थी सघिया आहिनि।
1: नाला में झेड़े बाद एक धुर जो स्कूल ते हमलो बजना जख्मी मखदूम गुलाम हैदर हाई स्कूल में डाहरी बिरादरी सा ताल्लुक रखंदड़ शागिर्दन में झेड़ो थो उस्तादन पारा शागिर्दन में ठा करण बावजूद डाहरी धुर के स्कूल ते का लठिन डंडन जो इस्तेमाल वे बजना जख्मी वाके खिलाफ उस्तादन ए शागिर्दन जो एहतजाज।
2: हैदराबाद में नवाब शाह जे रहवासियुनि जो ज़मीन ते मुबैना कब्ज़े ऐं तशद्दुद ख़िलाफ़ एहतजाज। तहफ़ुज़ ऐं इंसाफ़ जो मुतालबो नवाब शाह जे ॻोठ अलीबख़्श गोपांग जे रहवासियुनि बासर माण्हुनि जे मुबैना ज़ुल्मनि ज़मीन ते कब्ज़े ऐं तशद्दुद ख़िलाफ़ हैदराबाद में एहतजाज कयो। ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे तहफ़ुज़ फ़राहम करण जो मुतालबो।
1: वारे में सिंध के इम्कानी विरांगे खिलाफ अवामी तहरीक की रैली और तन बार की भी शिरकत। अगवाण है सिंध खिलाफ कें भी साजिश के कबूल न कयो वेंदो।
2: तलार में लाड़ कैंपस के यूनिवर्सिटी जो दर्जो न मिलण सिविल अस्पताल तलार की इमारत तमीर न थियण खिलाफ एसटीपी जो एहतजाज। एसटीपी अगवाणन ने कारकुनन पारां चांदनी स्टाप ते अलामती भुख हड़ताल भी कई। अगवाणन चयो त लाड़ कैंपस के यूनिवर्सिटी जो दर्जो ॾेई तलार जे अस्पताल तमीर कराई वञे।
1: मीरपुर खास में सिंधड़ी तालके के स्कूलन में उस्तादन की खोट खिलाफ़ शागिर्दन ए वालदन जो एहतजाज। मुजाहरे में टाउन चेयरमैन की भी शिरकत। मुजाहरीन चयो आहे त प्राइमरी स्कूल।
0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है एनपीएस 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान। जी एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

की बात किसी से न कहना और कहना तो अपने गुरु से कहना। चीलम चीलम।

0: लहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: कोक स्टूडियो सीजन 14

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
0: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: Coke Studio, Season 14.

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: जी नाजरीन तव्हां ही गीत ॿुधो यकीन तव्हां खे सुठो लॻो हूंदो मूंखे बि ॾाढो पसंदि आयो उर्दू में सॉन्ग हुयो अचो त हिननि खां पुछूं त हिन जी जेकी नादान दिलि आहे उहा कंहिं ते आई ऐं कंहिं सां प्यार कयो अथनि हिननि उमर साहब तव्हां खे हिन एल्बम में त तव्हां खे जवाब ॾियणो ई पवंदो हाणे बसि इलाही थी वियो आहे
2: सदर तव्हां हर भेरे मूंखे मजबूर कंदा हुई न कयो
1: जेसि ताईं मूंखे
2: भाड़े न कयो हुई प्लीज
1: ॾिसो जेसि ताईं मूंखे हिन ॻाल्हि जी ख़बर न पवंदी असांजी ऑडियंस खे ख़बर न पवंदी माण्हू तव्हांखे दीवाननि वांगुरु ईअं ई प्यार कंदा रहंदा ताकी उन्हनि खे ख़बर पइजी वञे त तव्हां कंहिंसां सेट लॻा पिया आहियो
2: सेट कंहिंसां बि कोन आहियूं सेट मुंहिंजी अमड़ आहे मुंहिंजा बचड़ा आहिनि मुंहिंजी फैमिली आहे मुंहिंजो घर आहे मां सेट आहियां पर तव्हां इहे राज़ जी ॻाल्हियूं गुज़री खे यादि न आहे की पोइ सुठी ॻाल्हि कोन्हे
1: अच्छा नादान दिलि तव्हां अहिड़ी कहिड़ी शइ ॾिठी जंहिंजे तव्हांजी दिलि ई बिल्कुलु नादान थी वई
2: इहा सूंह आहे सदफ़ सूंह उहा शइ आहे जादू जंहिंखे चवंदा आहिनि जादू जा टे क़िस्म हूंदा आहिनि हिकिड़ो आवाज़ हूंदो आहे हिकिड़ो सूंह हूंदो आहे जो चङनि भलनि खे चरियो करे छॾींदो आहे ऐं टियों जेको चीज़ आहे उहो आहे फन हीअ टई शयूं कुदरती हूंदियूं आहिनि कुदरती ॾाह ताईं दिलि त उहा ई मजबूर हूंदी आहे नादान हूंदी आहे
1: तव्हांजी दिलि खे इन्हनि टिनि फननि मां कहिड़े फन नादान कयो
2: टिननि मूंखे मोहे छॾियो आहे टिननि जो कुटल आहियां
1: अच्छा अमर साहब तव्हां हाणे असांखे नेक्स्ट गीत कहिड़ो ॿुधाईंदो
2: हा असांजे सिंध जो भलोड़ शहर सुठो उभरदड़ शहर जान है तू मेरी जान है तू दिल तुझ पे फिदा है तेरी कसम ज़फ़र ॾे थे साहब जो
1: अचो त नाज़रीन ही गीत ॿुधूं

0: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो GFM 90.8। हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: कोक स्टूडियो सीजन 14।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
0: सुनते रहो GFM 90.8।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: पीपल्स पार्टी के मेंबर सिंध के इम्कानी विरागे के मुकम्मल तौर रद्द कर छो। सूबे के टुकड़ा करण जा जवाब डिसनरन के होश का कम वठण की सलाह। ऐवान में जीए सिंध मरसू मरसू सिंध न ॾिसूं जा नारा। सरदार खान चांडियो है सिंध जा शहर कें पी जा न पर असाजा। ऐवान में लसानी तकरीर करण खिलाफ केस दाखिल कर वे। सूबाई वजीर मोहम्मद बख्श मेहर जो चवण है पाकिस्तान जो बुनियाद सिंध ए सिंध जो बुनियाद पाकिस्तान है। बिन्हीं के एक बे का धार नथो कर सकजे। साजिद जोखियो चयो त पाकिस्तान लाए सिंध जे अवाम जो कुर्बानियों विसारे नथी सकजन। सिंध के इंतजामी यूनिटन में विरायण की गाल कंदर पहरिया वाजे कन त केड़ो इंतजामी यूनिट ठाण चाहन था। मारे राष्ट्रीय चयो त सिंध असाजी धरती ए माउ जी है। माउ के टुकड़ा नाहे कयो वेंदो। सिंध ए कराची जेड़न लफ्जन ते तकलीफ थिए थी त सिंध टोड़न की साजिश किए बर्दाश्त कर सकजे थी। एमपीए हीर सोहू पारा सिंध खिलाफ गालाइंदड़न के गद्दार करार देने जो मुतालबो।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज।
2: जीएफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: जी नाजरीन तवा ही गीत बुद्धो यकीनन तवा के सुठो लगो हो मुखे भी डाढो पसंद आयो उर्दू में सॉन्ग हो अचो तनन का पुछूं त हनन हने जी जेकी नादान दिला वो के ते आई के सा प्यार कयो तनन उमर साहब तवा के हने एल्बम में ते तवा के जवाब देणो ही पंदो हाने बस इलाही थियो आ
3: सदव तवा हर बेरे मुखे मजबूर कंदा होई न कयो
2: जेस तई मुखे हने
3: बड़े न कयो प्लीज
2: दिसो जेस तई मुखे न गाज खबर न पंदी असन जी ऑडियंस की खबर न पंदी मानु तवा के दीवाना वांगे इही प्यार कंदा रहंदा ताकि उनन के खबर पजे वने त ता कैसा सेट लगा पे आयो
3: सेट कैसा भी कोन आयो सेट मुझी अमड़ है मुझा बचड़ा है मुझी फैमिली है मुझो घर है मैं सेट है पर तमा ये राज जी गालियो गुजरी की याद ना है कबो सुठी गाल कोनी
2: अच्छा नादान दिल तमा एड़ी केड़ी से डिठी जंदे तमा जी दिल ही बिल्कुल नादान थी वई
3: या सू है सदफ सू उआ शे है जादू जे चोंदा है जादू जा टे किस्म हुंदा है एकड़ो आवाज हुंदो है एकड़ो सू हुंदो है जो चंगन भलन के चरियो करे छदींदो है चीज है फन ये टी शुदरती होंद कुदरत जात है दिल तो ही मजबूर होंगी नादान होंगी
2: दिल के इन टन फन फन नादान
3: टन मुझे छो है जो कुटल आया
2: अच्छा अमरन साहब तुम हाँ सके नेक्स्ट गीत कड़ो बुधाई
3: हाँ सिंध जो भलोड़ शहर सुठो उभरदड़ शहर जान है तू मेरी जान है तू दिल तुझ पे फिदा है तेरी कसम जफर देते साहब जो
2: अच्छा तो नाजरीन ही गीत बुधूं

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: आसिफ मूसा, आसिफ खान, हिना दस्तगीर ए गिर सहू बहस मैसो वे सिंध के अमड़ वनू था उन वहदत सालमियत जो तहफुज भी कर सिंध से मोहब्बत ए वहदत जो तहफुज सभी की गड़ियल जिम्मेवारी है। इंतजामी यूनिटन के नारे से मानून के बेवकूफ न बनाया। सिंध असेंबली में एमक्यूएम मेंबर्स आबादी के हिसाब से इंतजामी यूनिट्स के वक्त की जरूरत करार दई छो। कुरतुलैन है इंतजामी यूनिट्स की गाल सिंध के विरण लाए न पई कई वे। इंतजामी मामलन में बेहतरी लाए इंतजामी यूनिट ठाण घुर्जन। जमाल अहमद तो कराची के मसलन बाबत आवाज उठण से नाराज थे बदर जमीनी हकीकत से गाल घुर्जे। कराची में रियासत खिलाफ गाल रून खिलाफ एफ आई आर केर दाखिल कह। फरहान अंसारी सिंध में इंतजामी यूनिट्स बाबत उथंद आवाजन के नजरअंदाज कर बदर उन्होंने सबबन से बहस कर वे। सिंध से मोहब्बत या पाकिस्तानी होजन जो कें सर्टिफिकेट दियण की जरूरत ना है। जमात इस्लामी के मेंबर मोहम्मद फारूक सिंध असांजी धरती है त कराची भी असांजो शहर है। कराची से मोहब्बत कदड़ कें वजात दियण जा पाबंद ना है। सिंध असेंबली में टे डी बी नवन सूबन ए इंतजामी यूनिटन से बहस दौरान मेंबर जो गोड़ एक बे की तकरीर में मुदाखलत स्पीकर पारा कावड़ जुजार नजम जब्त ईवान जो वकार बरकरार रखने की हिदायत। अवैस कादर शाह डिसिप्लिन की जड़ी कें भी सूरत में बर्दाश्त न कई वी कें भी मेंबर जहां लफ्ज एतराज जुगा हूं तो कार्रवाई में हजफ क्या वा। मेंबर एक बे की तकरीर में गैर जरूरी मुदाखलत का पास कर। वफाकी गुरु वजीर मोहसिन नकवी की लंडन में सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात जरिए जो चवण है तो मोहसिन नकवी आसिफ जरदारी के अहम पैगाम पहुंचाया। सदर आसिफ जरदारी नवन सूबन की बहस समेत मुख्तलिफ कौमी मामलों से पैंने मौके से कायम रहने का पैगाम दींदे कौमी मफाद खातिर समूरन धुरियन के गड़ी हलणो पवो। जैसे सूबाई असेंबलियों में पार्लियामेंट चाहिंदी तो सूबा ठही वेंदा। लंडन में साफियन से गालाइंदे कानून वाले वजीर सेंटर आसम नजीर तर है तो वजीर आजम केतरा ही भेरा अपोजिशन की गालियों की दावत दिनी है। आजाद कश्मीर में चूंडन बाद हुकूमत ठही चुकी है। अवाम जहा मसला भी हल थी रहा है।